0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना, माड़ा सुनना, माड़ियां गल्लां करनिया, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषय च प्रवृत्त होइए, कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे, गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग, उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे, वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा, नाम लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच, उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताए पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर, वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुत्र।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, किहड़ा मेहनत करे, किहड़ा कम करके खावे, इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग, जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बौले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई, ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लागे।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा, ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा, भाव छोड़ भी नहीं, ना चंगा आप कम करना, ना दूजिया नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो बंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: बंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे, ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा के दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे, ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां, वैसे ज्ञान जिहड़े ने संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ, कहिंदे ज्ञान दियां

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साढ़े घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे? क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल पुरख सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसवीं दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसवीं ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
1: जप तप नेचा नारा करहे देखत साज।
0: ना कोई जप रहेगा, ना कोई तप रहेगा, ना कोई निश्चा रहेगा। लोग एहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जिहड़े भरोसे ने वह टुट जाणगे, ते साजबाज जिहड़ा आह दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा परिवर्तित हो जाणगे।
1: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
0: सो जिस प्रकार दी जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी, जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
0: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो। इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय दे नाल बैठा रहेगा, बहुत कुछ हुंदा है जिहड़ा निश्चय नाल बैठा रहिंदा है। जिन्हां दा निश्चय गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते है अंत नूं जित उसे दी हुंदी है।
1: वाहे गुरु ए मंत्र जप सगल करेंगे काम।
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने बाकी कोई कुछ करन दी लोड़ नहीं है, मूल मंत्र है, जपजी साहब है, फिर श्वास श्वास आखो।

0: क्यों पए एक दिन पिक सतगुर की मर्जी संगत हाथ जोड़ के अर्जे।
1: एक दिन सतगुरु महाराज जी की मर्जी जदों बहुत प्रसन्न बैठे होण ते भाई सिंघो कुछ पुछना पुछ लो। इस तरह गुरां दे इशारे विच समझ गए कि सतगुरु कुछ दसना चाहते हैं। जो किसी का प्रश्न है सारी संगत ने हाथ जोड़ के इस तरह गुरां दे अगे बेनती की है।
0: साचे पातशाह कहिए चतर वरण मुंडत ही लईए।
1: महाराज जी ये कृपा करके सानू दसो ये जे चारे वर्ण ने सारे खत्री ब्राह्मण सूद वै साधक और भी बड़े बड़े लोग ने ये सारे जने मुन ही ने मुंडत भाव हरेक ने केस दाढ़ी कट के बिल्कुल ही सफाया।

इतनी मेहनत जगह से फिर ऐसे भी चल लड़ी टूट जानी है ना ते गोशखो प्यारे हो पामे अरबां खरबां की दौलत किसे करके रख दे हो एक विश्वास नहीं मिलना मगर ओ गुआचे रात दे पहली गल तेरी रात गुआची फिर आखे रात ते सौ के गुआती फिर दिवस गवाया फिर तू तरह तरह के सवेरे नाश्ते किते पानी नहीं पड़ी मैं थोड़ा जहां आप जी रैत मर्यादा ने जोड़ा लख सीधा करके बिठवा को सतनाम श्री धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद बैठे गल क्या आखो सतनाम अपनी औलाद के भले लिए आखो वाहिगुरु साहब कहने गुरसिख रहत सुनो हे मीत पता लगा की कहने गुरसिख रहत सुनो हे मीत बने मेरे मित्रो गुरसिखो सुनो रब ने मेनू रहत किया पर बाते उठ कर हित चीत चित जोड़ के घर रब विच जोड़ के प्रभात उठ के कर इशनान बने जप जाप गुरु गोबिंद सिंह जी मुकदस कलम कर इशनान पढ़े जप जाप जप जाप जप जी ते जाप साहब अमृत इशनान करके गुरु का सिख पढ़े आखो सतनाम श्री फिर अगला जीवन दस दे कहते वाहे गुरु नित भजन उचारे सिख दी रहत वाहे गुरु नित वाहेगुरु को हिरदे तारे वाहेगुरु को अभी जो बचन कह गए कहते ने वाहेगुरु बिन कह जो खाना है जे रब का नाम नहीं जपया अमृत उलट के नाश्ता कर लिया लंच कर लिया डिनर कर लिया सारा दिन लगा दिता ते रब का नाम नहीं ने जपया को सतनाम श्री एक साथ इंदा आखो वाहेगुरु वाहेगुरु किसी ने घर पछाता छन गया जिन्हां दे नाल मैं गया मैं उन्हां नूं बड़े धार्मिक बंदे समझदा सां उन्हां प्रशादा पका के मेरे अगे रख दिता उन्हां साधुआं अगे रख दिता मैं उदो बच्चा सां ते कहिंदा जदों थाली दे विच प्रशादा बणिया ते उन्हां ने एक बार भी ना आख्या वाहेगुरु ऐसे गुरबाणी का फैसला है कि खाना खान तो पहलो जे अज तक नहीं करते तो कल तो रोटी खान तो पहलो रोटी देने वाले भी याद कर निशुकरे ना हो शुक्र विच डुबो ये निशुकरे की निशानी है कपड़ा पाया टाई बत्ती शीशे अगे खलोता तैयार होके चले गया वो कहना जे प्रसाद पाठ पटंबर अंडा में जेदी कृपा नाले रेशमी कपड़े ते रोटी खान गए प्रशादा तोड़ के फुरकी ते कोई वाहगुरु ने आख्या जो मुंह लाउन लगे ते उस रोटी विचो रोण की आवाज आई वो साधु दिंदा जो रोटी रोई ते इन्हां मेरे नाल दिया ने आख्या क्यों ये आवाज रोण की क्यों आई ते कहिंदे अंदरों आवाज आई रोई मैं नाम आ किसे निशुकरे दे मुंह विच पैण लगी निशुकरे उत्थे लिखे ना पापी सिउ तन गड़िया पढ़ते हो सारी बार पापी सिउ तन ते थुक्कां पईआं ते रोटी रोई पापी दे अंदर चले चलिया इथों दी लंघूंगी कंध बन के बाहर निकल जूंगी लोकी मेरे ते थुक्कणगे इहदे बाद कुछ उस इंसान जेड़ा देन वाले नूं भी भुलाए उहदे अंदर चली गलत घर दे अंदर चली जदों रोटी रोई ते ओ साधु कहिंदा है उन्हां ने डर के पंज वार आख्या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जदों पंज वार डर के उहदे विचों वाहिगुरु निकलिया ते उहने आख्या वाहिगुरु तेरा शुक्र है रोटी खिड़खिड़ा के हसी ते साधु ने पुछिया भई रोई क्यों हसे हुण हसी क्यों है ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭਜਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਵੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਗੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੇ ਵੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਹਰ ਬੀਜਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਪਟੇ ਮੁਕਦਾ ਨੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਨੌਟੀ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड परोलो। ध्यान दियो जी, जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरु कर हर टर एक खूह बना। आ जिहड़े सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे, इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन। कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता, इस पीतर बलदा की जगह ते इन्हू खिचण नूं किनू जो मन नूं जोड़ो। जो का मतलब जोड़ दो, जो दो आप कहने बलद जो।

पूज भगवाना। हर जस रे मन गायल जो संगी है तेरो, अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो। संपत रत धन राज सिउ पद नी लगायो, काल फास जग कल करी सब भयो करायो। जान बूझ के बावरे तें काज जगारियो, पाप करत सुख ज्यो नहीं ने गर्भ नवारियो। जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई, जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो, जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, कहो प्रभ शरण आई, कहो प्रभ शरण आई। नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, नानक कहत पुकार के, कहो प्रभ शरण आई, कहो प्रभ शरण आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन न सको।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
1: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरु।
0: पहले दो चार हफ्ते तीन दी पहलों दी गल हुई जिधर एले तो कथा खत्म करके गए फ्री मोड, एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आनके कहन लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है, घर विच विपता बड़ी पई, दुविधा बड़ी घर विच पई। दास ने बेनती की थी, की होया है? कहन लगी बड़े दुखी हां, एक बार आनके अरदास करो। मैं क्या हुण समा नहीं, मेरी धीए फिर कदी आऊं, पर मैनू इत्थे दस की होया तेरे घर विच, तू अमृत छकिया? मैनू इतना लगदा वा कि तेरियां बीमारियां दा इको ही कारण है कि तू परमेश्वर तो बेमुख है, परमेश्वर तो किते मेरा गुरु कृपा करे, मेरे गुरु नानक वर्गे प्रचारक मिलन, ते कोई पुछे जी मैं बड़ा दुखी हां, ते मेरा गुरु नानक पातशाह आखे जय तन बाणी विसर जाए, तेरे दुखां दा कारण एहो ही हो कि तेनू परमेश्वर दा नाम भुल गया। ओनू बच्ची नू मैं बेनती कीती, मैं कहा धीए अमृत छगला गुरु वाली बन जा, नितनेम करिया कर। मेरे गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने एक वचन कीता, हर गाओ मंगल नित सखिए, बोलो हर गाओ। फिर एक बार प्यार नाल आप जी नू पता लग जाए, हर गाओ मंगल एक दिन नहीं नित, रोज उठ के नितनेम करिया कर, हे सखी हे जीव आत्मा, फिर सोग दुख ना व्यापे। बाणी पढ़ के वेखो, सोग दुख तेरे घर कोई दुख कोई दलिद्र कदी आवे ही ना, तू रोज उठ के नितनेम करिया कर। कहन लगी बाबा जी अमृत ते मैं छकिया सी। मैं कहा फिर परवटे ते तेरे कट्टे ने, बेदबी ते तू रोमा दी कीती है, तू कह नहीं मैं अमर छकिया? कहिंदी जी ये तुहाडे प्रचारक ने सब कुछ करवाया। आर सुन लो हुण मैं जिहड़ा वचन कहन लगा आप जी नूं, मैं कहा जी प्रचारक ने करवाया? प्रचारक दा ते काम हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल जोड़ना, टुटे हुए नूं कहना पे प्यारिया परमेश्वर दे नाल जुड़ जा। कहन लगी जी एस कनोगा पार्क गुरुद्वारे, ध्यान देना कनोगा पार्क गुरुद्वारा एले दे विच, चौंकड़े मार के सोरी तरह बैठो सुजेत हो गए, कनोगा पार्क गुरुद्वारे एक कथावाच कथा कर रहा है। मैं कहा जी हुण भी? कहिंदी हां। मैं कहा जी ना की है? कहिंदी शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम, ध्यान दिओ शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम है, नखलोग दा रहण वाला है, ते ओ काला इलम जानदा है। आखो सतनाम श्री। मैं कहा जी काला इलम जानदा कोई गल नहीं, फिर काला ते काली दे राहत हुंदी, काला काला ते पाप दा वच किया, फिर कड़ी गल है तेनू जानदा? तू नितनेम करदी तेनू की हो गया? कहिंदी जी मैं ओनू भी यही बेनती कीती जिहड़ी तुहानू कीती, कि उहने कहा मैं तेरे घर आण के उहदा इलाज लवूंगा। मेरे घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी, उहने सब तों ते पहलो आखिया कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे थले काला इलम लिखणा है। थले जिहड़ी चादर है ना, उत्ते उन्हें पेंसिल दे नाल काला इलम लिखिया। ध्यान दिओ साडे विच कालियां भेडां किन्नियां तुरियां फिरदियां, गुरु नानक दे बाणी दे विच प्रचारकां दे नाम दे उत्ते की कुछ हो रहा है, काला इलम उहने थले लिखिया। फिर मैं उहनूं आखिया कोई मंत्र जंतर, मंदी मैं ते भुल्ली सां, मैं ते आखिया मैनूं कोई मंत्र जंतर दसो जिहदा मेरा भला, दुखी बंदा तां हर पासे तुरदा है। उह कहिंदा मेरा जंतर तां चलूगा जे तूं कृपान लाएंगे ते, गुरु नानक की बख्शी दसवे पातशाह दी गल विचों कृपान ला, कड़ा ला, कंघा रख दे, केसां दी बेदबी कर दे, कशहरा सतगुरु दा दित्या बख्शे पंजे ककार ला दे, ते फिर मैं अपना मंत्र पढ़ूंगा, पंजे ककार उन्हें मेरे लवा दिते ने, ते फिर भी मेरा बनिया कुछ नहीं, मैनू ते बर्बाद करके रख दिता है। ते फिर गुरु दे सिख भेजे, गुरु प्यारे उन्हू जाके पकड़िया, पकड़ के उन्हू पुछया क्यों भाई ये गल हुई है? कहिंदा हां हुई है, मेरे काले मंत्र दे सामने कोई टेक के विखावे मैं ते पटाके पा दूं, इतना दे वचन बोलने लगा। फिर गुरु नानक पातशाह दा प्यारा एक सिख चौंकड़ा मार के बह गया सामने, कहिंदा चला हुण मंत्र तेरा, केड़ा तेरा मंत्र है? चला मेरे सामने, चला मेरे सतगुरु दे मंत्रां दे मंत्र दे अगे अपना मंत्र, जंतरां दे जंतर दे अगे। गल विश्वास दी आ, सानू डर आउंदा है, असी गुरु नानक दा मंत्र कमाया नहीं, असी गुरु नानक दे मंत्र उते विश्वास नहीं कीता। गुरु दे प्यारियो चौंकड़ा मार के गुरु दे सिख ने मूल मंत्र दा पाठ शुरू कीता है, दसा मिनटां बाद उठ के कहण लगा जी मेरे कोल गलती हो गई, मेरा मंत्र नहीं चलदा, नहीं चलना ए किसे मंत्र, इस मंत्र अगे कोई मंत्र नहीं चलना, मगर तुसी दृढ़ करके पहलो एदा जाप कर लो, फिर गुरु नानक पातशाह तुहाडे उते रहमता करूगा। हुण ते गुरमुख प्यारियो निकल गया इथो भज के, कोई पटाका भी नहीं पा सकिया, कुछ कर भी नहीं सकिया, क्योंकि चोर ते चोर ही है ना, चोर ते चोर ही। पिंडा विच की कहिंदे चोर दे की नहीं हुंदे पैर, नहीं चोर किते टिकदा थोड़ा है। धन गुरु नानक दी बाणी दा कोई उपदेश हुंदा, वड्डे तो वड्डे चैलेंज करन वाले नूं कहिंदा आ पई, ते गवाही देंदा कि ऐ वेख आ शब्द मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे ऐस पन्ने ते लिखिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे, मैं कह रहा सा जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर उलामा मिले, ताही उलामा मिलता, जे गुरु नानक दा सिख कितों मंत्र जंतर तंत्र कराउंदा है ते आपां ते सारे कम्मां लई की करना है।

वचन गुरु नानक पातशाह ने बाणी विच कहे ने, उन्हां दे उत्ते आपां पहरा देना, सेवा ते सिमरन नूं दृढ़ करके अपने मन विच वसाउणा।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी पावन बाणी जे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर की बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जिड़िया भारी भजान के भारी भरोसो वड्डिया बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभानू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दियां मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपां नूं सतगुरु गरीब नवाजी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दाद पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाह।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

0: ही सत्य जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगुच सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले
1: बुलाया तेरा
0: ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी साध संग नानक

सो पाई रे राम कहो चित लाए। बोलो पाई रे मन नु मुखातब करके पाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर ले चलो शौ देखे पति आए। हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई। परमेश्वर खुश होके आप जी नु गल नाल लावे। शौ देखे पति आए। सतगुरु गरीब नवाज आप जी नु गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने आओ सारे पढ़िए वणज।

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन
1: दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने, सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदियां बौड़ियां, ओ जड़ा विण बोलिया सब कुछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने वचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी, हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है, ते भाई साहब नूं पुछिया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी, ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हें भी नमाणे नताणे होके बेनती की, हे साहबा सारे पिंड वालिया कोल चरण है गे, हाथ है गे, अखा है गिया, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्श तेरे की

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देण नू तैयार है। आंदी हां सजना नैण हमारे पिरिया रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नू नहीं देख दियां, ये 24 घंटे गाउंदियां ने एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

आख्या दो चार दिन कट मैं आऊंगा। उन्हें कहा ना नैन हमारे फिर आए रंग रंगारे एक तिल पी ना तरीजे हुण ते एक तिल मात्र धीरज नहीं हो कर दे ए ते इश्कों इथों तक पहुंच गया प्रभ स्यो मन लीना प्रभु दे चरणा च मन इतना लीन हो गया कितना ज्यो जल मीना जितना जल तो बिना पानी तरफ तरफ के मर जांदी है मच्छी इतना सजना हुण जे एक मिनट परमेश्वर नहीं मिलता ते मेरी हालत यह होगी मच्छी वर्गी मैं तड़फ तड़फ के मर जूंगी। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जिवें तसंतिया जितना चातरक तरसदा वा उस बूंदली वो मेरी हालत होगी। सजना एक बार किते मिला एक बार ओदी खबर दस मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया के मालिक जी कहिंदे ने फिर उन्हें आख्या आ दसा ओदे मिलने की निशानी आखो सतनाम श्री सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी तुहाडे विचों भी किसे नूं प्यास लगी होवे तुहाडे विचों भी किसे नूं भुख लगी होवे ते मेरे मालक दी बाणी विच लिखिया सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी मन तन दे दे लोकां दी शर्म छड़ दे। आ जिहड़े मेरे वीर भैण भरा अज विछड़े बैठे आ जी भी करदा है मिलने नूं मगर लोकां दी शर्म पिछे दाड़े काले करदे आं लोकां दी शर्म पिछे परवट्टे कटदे आं लोकां दी शर्म पिछे वाल काले करदे आं लोकां दी शर्म पिछे समाज दे रस्मां पूरियां करन विच रब नालों टुटदे ने। प्रभु ने उन्हें प्यारे ने आख्या आ मैं तेनू दसा रब कि तरह मिलदा मान तन अर्प बोलो मान तन ते ताज लो लाज लोकानी लोकां दी शर्म करनी छड़ दे आ उस परमेश्वर दे चरणा विच आण के जब नाची तब घूंघट कैसा हुण ओदे चरणा च ओदी खुशी लैण लई ओदे अगे आण के बेनतियां कर एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मैनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवांदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्स दिखाए जी एक छिन दर्स दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: आओ जुड़ो, आखो सतनाम श्री, नाभी चो आखो सतनाम, फिर एक बार खिंच के आखो सतनाम श्री, अपने परिवार दे भले लई आखो सतनाम श्री, पंथ दी चढ़दी कला लई आखो सतनाम श्री। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए। कल जो आप जी ने सरवण कीता सी उत्तो अगे मेरे गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे बचन घरां विच की बोलना है, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो, चेता कर लो, चेता चेता, कि कलजुग विच चेता ही भुल गया तां ही सब कुछ हो गया, परमेश्वर ते भुलिया, चेता ही भुल गया, चेता आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना, चित आ जाए, जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दई वसाया, वह घर वस जाते ने जिथे गुरु दियां बचन चेते आ जाण। गुरमुखी बोलिया करो अपने बच्चों के नाल, घर विच अपने जीवन दे विच पंजाबी नूं लियाओ, मिठी बोली आ आप जी दी, सतगुरु कृपा करे। आओ सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फरीदा ए बेशक कंदला तरिया खंड लेवाड़।
0: आखो सतनाम श्री वाहे। बाबा फरीद जी कहिंदे ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने, ए जिहड़े दुनिया दे भोग ने, यह है ने यार दियां गंदलां। गंदलां समझते हो ना, गंदलां साग दियां गंदलां नहीं है तोड़दे हुंदे, उन्हां वल ध्यान जरा लै लो। ए दुनिया दे जिन्ने पदार्थवाद जिन्हों आपां कट्ठा करी जाने हां, साहब जी कहिंदे ए यार दियां गंदलां ने, यार दियां कादियां, ए विस गंदलां, बोलो ए, ते प्यारियां को लगदियां जी। कहंदे धरियां खंड लिवाड़, धरियां जितना कुनैन दी गोली खानी होवे ते उहदे उत्ते मिठा चमकाया हुंदा ना। ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने अंदरों यैर ने, खसम वसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साद। ए हर चीज वेखण नूं मिठी लगदी, दुनिया दे भोग मिठे लगदे ने, दुनिया दे पदार्थ मिठे लगदे आ, माया जिन्नी घर विच आवे उन्नी चंगी लगदी आ। भैण भरा सज्जन मित्र, एक थां ते गुरु अर्जन देव साहब ने कह दिता, प्रभ स्वामी कंत वेहूणिया, प्रभ स्वामी कंत वेहूणिया, मीत सज्जन सब जाम, जाम मैने जम। एक परमेश्वर तो बिना जिन्ने मित्र सज्जन ने ना सज्जना, यकीन जम ने जम जम, तेनू खाण लई तेरे नाल चंबड़े ने। मेरे साहब जी इत्थे कहिंदे ने, फरीदा ए विस गंदलां, ए दुनिया दे पदार्थ जहर दियां गंदलां ने, मगर एक धरिया खंड लिवाड़, इना लिपन एडा मिठा करदा, पुत भी चंगा लगदा, धी भी चंगी लगदी, पैसा भी चंगा लगदा, दुनिया दा हर पदार्थ, दुनिया दी हर पदवी, दुनिया दी हर शह चंगी लगदी। मगर मेरे साहब कहिंदे जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, मगर जे तिस नजर ना आवई हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां व्यापे जा को ओड तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना, ए सर्प जैसे अरजारी। अगे सुनो, नव खंडन को राज कमावे, दुनिया दे पदार्थ नवा खंडा दा कोई राजा बन जाए, मगर मेरे साहब कहिंदे अंत चले गो हारी, अंत हार के जाऊ, क्योंकि ए चीजा वेखण नूं सोहणियां लगदियां। हर चीज जे किसे नूं पदवी मिल जाए ते गुरमुख प्यारे उहदा जोड़े झड़न नूं दिल नहीं करदा, ना ना ना। तुसी की सोचदे कोई मिनिस्टर आण के इत्थे जोड़े झाड़ू, तुसी की सोचदे किसी गुरुद्वारे दा प्रधान कदी जोड़े झाड़दे वेख्या जे, किसी गुरुद्वारे दे सैकटरी नूं जूठे बर्तन साफ करदे वेख्या जे। तुसी सोचो जरा अपने अंदर झाती मारो, इथों आले ना समझ लो कि सानू कहण डिया। मैं समुचे गुरु नानक पातशाह दे घर दी गल कर रहा, मेरी हाथ जोड़ के बेनती, अपने अंदर झाती मारो। पदवी ने परमेश्वर वसार दिता, पैसे वाला कदी न्यो के जोड़े नहीं साफ करता। दुनिया ते जिड्डा वड्डा बंदा बन गया ओडा ही रब नालों दूर हो गया। ते मेरे साहब जी कहिंदे इन्हां ने सारियां दाता ने ए इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण वसारे, तुमरे ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਉਧਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਜੋਗ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਇਹ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਦਣ ਉਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਸੰਚੀਏ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਭਲਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੋ

हे साहिब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहिब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे केहड़ा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो पौ लखंडे तार पियो पौ